0: हाला हे दिलियाली हम आला दिले मेले ई खाती हाले हम आला दिलियाली खाती आला हे के दिलियाली बाहले हेले रेले वसुत बाल खड़ा वाली बाहे मेले ले थेमा खाती लाले देला सोए नवत लते ना सुत बाल येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: देखे रामा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के दियाले हम आती
1: रे बे दे दे रवा तिरा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माथिलिया ले ओबरा सुदिवेवा स्वामीन वास ओबांसी उदाउ करन ने किने केना

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षं पन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसु मेनव। मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा। आमेन।